सदा उसकी मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना। शमी भाई जी
1: जी,
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कूरी वटना, दिल

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे
0: जी,
1: तमा मैं थोड़ा ही लेना चाहता सी पर ज्यादा लै गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के।

वैरी मीत च फर्क न कोई, हरख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर इक नू पे देन सहारे।

0: सिस्टम सिस्टम जरूर एस्टैब्लिश हो चुका।
1: हाँ
0: पर
1: जी हाँ
0: फिर
1: जी
0: मैं एक बार गल कहना चाहूँगी, भारत अजिहा देश है जिस किन्ने ही गेरे साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स
1: वाकई
0: पर्सन, किन्ने वधिया शख्सियत जड़े ने
1: जी।
0: अपने देश तो निकले ने, वो बिना सिस्टम ने निकले ने, जेडी सिस्टम की आप गल
1: और
0: कर रहे
1: ये
0: हो,
1: नहीं है तभी वो
0: तां
1: है
0: वी दे एग्जिस्ट। सो बेसिकली
1: एग्जिस्ट।
0: कुछ है अपने सिस्टम च इस तरह का कि स्टिल इन्हां चीज़ों के ना होने के बावजूद जेडे कि वेस्टर्न देशों के विच हैगी, ये सिस्टम
1: बिल्कुल
0: अपना सेल्फ जेडा सस्टेनेबल हैगा। कुछ है
1: यार
0: इनहेरेंट चीज़ है साडे देश के विच कि इन्नी महान शख्सियतें जड़ियां वो साडे देश चों आईयां ने, बिना इस सिस्टम
1: कुछ
0: दे
1: तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं
0: मिट्टी
1: हमारी
0: नहीं हमारी।
1: गलती
0: बाहर दे सिस्टम च आपां ब्रेक दे विच कोचिंग दी गल भी कर रहे सीगे,
1: जी।
0: कोचिंग दे विच भी एक एक एक व्यक्ति दे अंदर दी गल हुंदी है। कई बंदे
1: जी
0: हुंदे आ ओह कहंदे ने कि बिना कोचिंग दे असीं एक स्टेप अग्गे नहीं लै सकदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कुछ
1: जी
0: बच्चे हुंदे हैं स्ट्रीट लाइट दे विच, रोशनी दे विच पढ़ के भी जिहड़ा है अज बड़ी उचेरी थावां ते, मैं अपने
1: जी
0: बैच दी गल भी करदा आईएएस
1: जी
0: बैच दे विच, मेरे
1: अच्छा जी
0: नाल कई इस तरह दे बच्चे सीगे बिल्कुल ही जिहड़े उहनां कोल रिसोर्सेज नहीं सीगे पढ़न लई,
1: अच्छा जी
0: ओह कितें जॉब कर रहे सीगे, कोई किसी किसी दुकान पर लगे हुआ सीगा, बट
1: ओके
0: जिहड़ा समय उन्होंने बचता सीगा ओहदे विच ओह किताबां लैके आंदे, कोई रद्दी की दुकान तो किताबां लैके आंदा
1: क्या
0: ते
1: पता
0: ओहदे
1: क्या
0: उत्थों
1: पता
0: उत्थों पढ़ाई कर करके अपने सेल्फ स्टडी कर करके ओह उत्थे तक पहुंचे। सो बेसिकली जरूरी नहीं कि सानू सारी सुविधावां मिलनगियां ताहीं असीं लाइफ च कुछ बन सकते हैं, जे मन च तुहाडे हैगा विश्वास हैगा, तुहानू अपने
1: जी।
0: आप ते विश्वास हैगा, तुसीं कुछ भी अचीव कर सकते हो।
1: सुविधावां की घाट का रोना रोना एक बहानेबाजी कह सकते हैं आपां कि है
0: बिल्कुल
1: नहीं है, फिर भी रिसोर्सफुल बंदा है जिहड़ा वो कुछ ना कुछ कितना ना कितना अपना सब तो वड्डी गल मैनूं लगदी है कि जिहड़ा तुहाडे कोल कोई टीचा होना जरूरी है कि
0: बिल्कुल,
1: तुसीं कितें पहुंचणा है, ये साधन फिर बंदा जुटा लैंदा
0: अपने
1: है,
0: आप जुटा लेना।
1: साधन
0: बिल्कुल
1: जुटा लैंदा है। बिल्कुल जिवें तुसीं उदाहरण दित्ती है जिहड़ा लोकां दी, तो वाकई उहनां नूं पता सी कि कोई ड्रीम है उहनां दा, उहनां ने उहनूं रियलाइज़ करना है ते उह कीता। उहदे लई चाहे उहनां ने रद्दी दी दुकान तों किताबां लईआं, चाहे उहनां ने कुछ भी कीता, बट दे डिड उहनां, और उह सक्सैसफुल भी होए। तो
0: मन
1: ये
0: में एक जो तुसी ठान लेंदे हो ना, एक मैनूं हिंदी दी लाइन याद आ रही है, लहरों को शान देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है,
1: हाँ
0: हम जब
1: बिल्कुल
0: उठेंगे तूफान बंद कर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है।
1: क्या बता वाह जी
0: और आप
1: वाह
0: जब एक बार मन में ठान लिया कि
1: हाँ
0: मैंने
1: बिल्कुल
0: ये अचीव करना है,
1: जी।
0: उस तो बाद तुहाडे मतलब कोई तुहानू रोक ही नहीं सकता, एक बार ठानन की लोड़ है तां मन।
1: मतलब जे फेलियर दा रोना रोण वाले लोग आ वो ते फिर लगभग उन आप ही जिम्मेवार है।
0: नहीं, फेलियर फेलियर तुहाडी लाइफ च बहुत जरूरी है,
1: जी।
0: कोई भी तुसी सक्सेस नू अचीव करना है, एक बारी जे तुसी फेल हो जांदे हो
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: कहंदा कि वो वरदान हुंदा है,
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: ओहदे बाद तुसी सारी उम्र अपने उम्र जेहड़ा है संभल के चलते हो कि पिछली बार
1: हाँ
0: मैं ये फेल आया सी इस कारण तो फेल होया सीगा,
1: कॉशियस हो जाते हैं
0: कॉशियस हो जाते बिल्कुल।
1: जी।
0: फेलियर तो बाद जेहड़ा उठना हुंदा हैगा वो बहुत तुहाडा लाइफ
1: वो
0: च,
1: जरूरी है जी
0: वो स्टेप जे तुहाडा चंगा चला जाता है उस तो बाद तुहानू कोई नहीं रोक सकता। जो तुसी फेल हो गए बह जाओगे, यू क्रिप करन लग जाओगे कि
1: हाँ
0: मैं तो
1: कर
0: फेल हो गया
1: लेंगे
0: जी, मैं हम कुछ नहीं कर सकता लाइफ दे विच, मैं कुछ
1: हाँ
0: और
1: रब
0: देखना,
1: ने
0: मैं
1: ठीक
0: रब नूं दोष देता,
1: नहीं
0: गुआंढियां नूं दोष देता, इस तरह
1: किया
0: कर लिया फिर उत्थे ही तुहाडा जिहड़ा सारा खराब हो जाना फोकस, जे तुसी खड़े हो गए उस तो बाद फिर तो तुहानू ही रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल वो जरूरी है जी।
0: बिल्कुल
1: गिरते हैं शाह सवारी मैदाने जंग में,
0: बिल्कुल
1: वो तुकम
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल
1: गिरेंगे, ऐसा जरूरी है कि बंदा घट्टो घट तुरे तो सही, वो कोई हिम्मत ना रखे कि कल्पना चावला ने उन्हें लिखा कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी कंध ते लिख के ला लिया, तो वाकई उन्हें ड्रीम फॉलो किया ते
0: बिल्कुल
1: स्टार की यात्रा की, ते ये जरूरी है। जिहड़ा कोचिंग एक आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी कोचिंग दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे तो मैन टू मैन वो वेरी करती है, किसी नूं लोड़ है किसी नूं नहीं लोड़ है। फिर भी जिहड़े कोचिंग सेंटर्स है ये तो मशरूमिंग अप इन्हां दी इन्नी ज़्यादा हो रही है, इन्हां दी कोई सिग्निफिकेंस अपन नूं की लगती है जिहड़े
0: कोचिंग एक भेड़ चाल बन चुकी है आज के जमाने के विच।
1: जी।
0: कोचिंग मैं कहना कई कई बच्चे इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिना कोचिंग के असं पढ़ ही नहीं सकते, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। कोटा है,
1: हाँ जी हाँ
0: कोटा
1: जी हाँ जी
0: दिल्ली
1: जी
0: एक
1: हाँ
0: हब
1: वो
0: बन
1: तो
0: गया
1: पूरा
0: है,
1: कोचिंग जंगल बन गया
0: उत्थे
1: जी
0: हब बन गया है, तो उत्थे जिहड़े बच्चे निकल रहे ने काफ़ी सक्सेसफुली निकल रहे ने, बट
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: परसेंटेज वेखो उत्थे
1: जी
0: जो लख बच्चे जा रहे ने तो 100 बच्चा निकलता है,
1: ओ जी बिल्कुल
0: ठीक है। ये चीज़ नू आपां 100 दी अचीवमेंट नू देखते हैं कि 100 बच्चा कोटा ने निकालता या दिल्ली ने
1: निकालता हाँ
0: निकालता या कोई पर्टिकुलर शहर इस तरह का जिहड़ा 100 बच्चे हर साल निकालता है, बट उत्थे परसेंट